अपने वीरा नाल माए रल के मैं रहंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी। जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए,

0: सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मोहो कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। छड़ चली अज माए, छड़ चली अज माए, बाबले दी गली में, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में। छड़ चली अज माए, बाबले दी गली में, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में, हुन साम के रख ले माए, हुन साम के रख ले माए, मेरे गुड़िया पटोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। तेरे की करा महल चुबारे माए, तेरे की करा महल चुबारे माए, जिथे मेरे जोगी था नहीं, जिथे मेरे जोगी था नहीं, गिला की करा जमाने ते, गिला की करा जमाने ते, मेरी ता अपनी बनी माँ नहीं, मेरी ता अपनी बनी माँ नहीं। बेगाने आच पोगल नू भेज के माए, बेगाने आच पोगल नू भेज के माए, कीता अखा तो लेनी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओ लेनी, हुन लुक लुक, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओ लेनी। काली तुयों मचाई सी माए, मैनू पाने दी डोलेनी, काली तुयों मचाई सी माए, मैनू पाने दी डोलेनी, मैनू पाने दी डोलेनी। शुक्रिया साथो, बहुत बहुत मेहरबानी।
1: प्यारे श्रोतियों, सुरेंद्र भोगल जी तों बाद हुण असीं सद्दा देण जा रहे हां इंग्लैंड वसदे शायर तारा सिंह जी नूं। तारा सिंह जी वैसे दे पंजाब दे जिला जलंधर दे एक वड्डे पिंड कुकड़ पिंड नाल संबंध रखदे ने, ते बहुत लंबे समय तों ओह बर्मिंगम दे नेड़े रहिंदे ने। उत्थे ओह इंडियन वर्कर एसोसीएशन दे नाल जुड़े हुए ने। इस दे नाल दी नाल ओह ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
2: ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੀਤ ਹੈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਛੂਹਣਾ। ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿੰਦ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਜਿਸਮ ਤਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਤਰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਵਾਮ ਮੁਰਦਾ ਆਵਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਲਈ ਹੈ।

जे डुब गई जे संतरी जांदे, ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदे। सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जर क्या भी नहीं, सूली

जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई, जे समतरी जांदे ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, की करां जे आपे चे की करां।

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई जे संतरी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा हुंदा लाखा नहीं, जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा।

सस्ते मुल देवे की। बोलिया खीरे सस्ते मुल देवे की, लाल तकड़ी विच तुल देवे की, फुल पैरा

दे पागा जमना किस्मत रुड़ियां दा पारी उमरा तक नहीं दे सकते असी देना कुड़ियां दा।

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बस ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च दो रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुतियां।

तू अपने बेले आबाद रखी, जेकर मैनू मिलना होया मेरी मड़ी ते पिछले पैर जावी, नी मैथों वक्ख होण तो पहला मैनू देके थोड़ा जहर जावी।

मैं सदा तेरे नादार उड़ा रहा नी, निकल गया दार उड़ा, मंजिल दे वाले चले सी नी, मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रहा नी, निकल गया रादा रोड़ा, मंजिल दे वाले चले सी नी, मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मेरे कुप हनेरे नू

0: दिन रात मेहनता कर दे हां, मजदूर पक्की सरकारां होण जे फिर खुदकुशियां क्यों कर दे हां। कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, ताइयों हक्कां दे लई लड़दे हां। ऐ जिंदगी असी मजदूर तेरे जिउण लई मेहनत करदे हां, जिउण लई मेहनत कर दे हां।
1: प्यारे श्रोतेओ, तुसीं हुणे ही कुलवंत सिंह सैदो जी दी कविता जिंदगी असीं मजदूर तेरे सुन के हटे हो। ते हुण मैं तुहाडे सन्मुख पेश करन दी खुशी ले रहा दिलशाद अली जी नूं। दिलशाद अली जी जिहड़े पंजाबी दे नवे उभर दे गायक हन, ते ओ बहुत वधिया सुरीली आवाज़ दे विच अपने गीत जिहड़े पेश करदे ने। साडी अज दी इस गाउंदी शाम दे विच ओ एक रचना लैके हाजिर हो रहे ने, करके मैनू याद रोया करेंगे। आस करदे हां कि इस रचना नूं तुसीं पूरा माणोगे, ते जिन्हां दे दिलां दी गल उन्होंने कीती आ ओह गल भी उन्हां तक पहुंच जाएगी। ते क्योंकि रोया किसे नूं दिल तो ही जा सकदा है, हसण वेले तां बंदा ओपरा भी हस सकदा है, पर रोण वेले उपरों नहीं रोया जा सकदा, सिर्फ दिलों रोया जांदा है। जदों हाय कही जांदी है जां रोया जांदा है, ओह सिर्फ रूह तों, दिल तों ते दिमाग तों रोया जांदा है। ते दिलशाद अली जी साडे स्रोतियां लई अपना कलाम लैके हाजिर ने। दिलशाद अली जी, तुहाडा दुआबा रेडियो दी गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है।
2: रचना गजल कुछ इस प्रकार है दोस्तों। करी करी के मैनू याद, रोया करेंगी तू, करी करी के मैनू याद, रोया करेंगी तू, पलिकानू हंजुआ दे नल पिगोया करेंगी तू, करी करके मैनू याद, रोया करेंगी तू, हाय करी करके मैनू याद। बदलां दे विच, बदलां दे विच चन जदों मुस्कुराएगा, बदलां दे विच चन जदों मुस्कुराएगा, चेहरा मेरा फेर तैनू याद आएगा, चेहरा मेरा फेर तैनू याद आएगा, किद्दां हिजर दे दाग, किद्दां हिजर दे दाग, तोया करेंगी तू, करी करके मैनू याद,